0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और हमारे सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।
0: वो तो लग रहा है
1: जी।
0: आज क्या खाया था तुमने नाश्ते में?
1: नाश्ते में मैंने खाया है बढ़िया सा पोहा।
0: पोहा? और लंच में?
1: लंच में खाया है मैंने रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सभी कुछ खाया, और साथ में दही।
0: और सलाद खाया कि नहीं खाया?
1: वो तो जरूरी है, सलाद के बिना तो मजा नहीं आता खाने का।
0: और जब हम नाश्ता करते हैं तो अंकुरित भोजन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छा पोषण जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ ना कि अपने पोहे में थोड़ी सी अंकुरित मूंग की दाल है ना, और या कुछ इस तरीके की चीजें अंकुरित जो होते हैं चने होते हैं, वो कुछ मिक्स करके अच्छे से एक नई तरीके की रेसिपी बना लेती हूँ। उसमें टमाटर वगैरह डाल के काट के बहुत अच्छा सा बन जाता है।
0: क्या बात,
1: खाने में स्वाद होता ही है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।
0: सबसे बड़ी बात है कि हमें जो भी खाना है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए। और इन दिनों हम पोषण सप्ताह मना भी तो रहे हैं। और देखिए, कहते हैं कि अगर बचपन में हमने पौष्टिक भोजन कर लिया है तो ताउम्र हम स्वस्थ रह सकते।
1: बिल्कुल, वो ग्लो जो होता है ना, वो हमें बाहर से लाने की जरूरत
0: नहीं होती है कि हम बड़े ब्रांड के पाउडर, क्रीम, काजल ढूंढते हैं बाहर जा जा के, खास तौर से महिलाएं। जब हम मेकअप से जो है लिपा पुता चेहरा लेकर बाहर निकल तो जाती है, लेकिन असलियत तो सामने आ ही जाती है।
1: बिल्कुल,
0: आपके भीतर जो चल रहा है वो सामने आ जाता है आपके चेहरे पर। अगर आप भीतर से कमजोर है तो आपका चेहरा बता देता है।
1: बिल्कुल, बता देता है कि कहां आपको किस चीज की कमी हो रखी है।
0: हाँ, आपको सही भोजन मिलना चाहिए, सही पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है और बीमारियों से लड़ने की एक शक्ति मिलती है।
1: बिल्कुल, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो एकदम सही बना रहता है।
0: हाँ,
1: तो जो बीमारियां हैं वो जल्दी हमें इफेक्ट नहीं करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब बात चली कि बचपन में हमें अच्छा भोजन अगर मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है, तो हम अपने खासतौर से सखियों से कहना चाहेंगे कि हम पूरा दिन घर की साफ सफाई, घर को सुंदर चमकाने में, कार को चमकाने में, स्कूटी चमकाने में, टीवी को चमकाने में लगा देते हैं, या फिर कई बार खुद को भी चमकाने में लगा देते हैं
1: जी,
0: है ना। लेकिन जो हमारे भीतर का जो है ना तत्व, उसे हम नहीं संभालते हैं। तो अच्छा भोजन करें, अच्छा पोषण लें, और खास तौर से दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर सबसे जरूरी बात है कि समय पर उचित और स्वच्छ भोजन ग्रहण करें, अपने घर वालों को भी खिलाएं, खास तौर से अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो और भी हमें ध्यान देना चाहिए
1: जी। क्योंकि ना जब हम खुद देख सकते हैं ना कि अगर हम संतुलित भोजन की बजाय कुछ बाहर या जंक, मतलब बहुत इस तरह की बाहर की जो चीजें हम खाते हैं तो उससे क्या होता है ना, और जब हम घर की सिर्फ बनी हुई चीजें खा रहे होते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एकदम पीला पड़ा सा चेहरा या हमारा वेट बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जबकि घर की चीजों को हम अगर खा रहे होते हैं, संतुलित भोजन खा रहे होते हैं ना, तो हमें बाकी चीजों से छुटकारा मिल जाता है।
0: और सबसे बड़ी बात, जो बीमारियां आजकल चल रही है ना, वो इसी कारण है कि हम जंक फूड पर बहुत विश्वास करने लगे हैं, डिब्बा बंद खाना देखने लगे हैं, 2 मिनट जो खाना बनने लग गया है उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे। देखिए, रिजल्ट सामने है, हम लोग बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो ये सभी कारण है। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहेंगे कि अच्छा खाएं, अच्छा बनाएं, अच्छा पकाएं, और अपने बच्चों को, घर परिवार वालों को अच्छा पोषण भी दें।
1: बिल्कुल।
0: तो आज की विषय क्या है ये भी लगे हाथ तो बता दें, तो उसके बाद एक प्यारा सा गीत हम पेश करते हैं।
1: हाँ, आज हम विषय भी लेकर आए क्योंकि पोषण सप्ताह चल रहा है, तो वृद्धावस्था और पोषण की, जब हम एक एज में पहुंच जाते हैं तो उस वक्त हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप भी अपने सुझाव भेजिए, और साथ ही कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम बात करेंगे आज निदुमोलु सुमति, जो की कला क्षेत्र में है, और मुझे कुछ कहना में आज बहुत मजेदार बात होने वाली है।
0: क्या?
1: वो है बचपन के मजेदार अंधविश्वास। वही ना, कि आपने ये बीज खा लिया, अब तो बस पेड़ निकलेगा, क्योंकि पानी तो हम पी रहे हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो अब ये बीज
0: पेड़ निकलेगा। और हम सच्ची मान लेते, डर भी जाते थे, या दांत टूट जाता तो कहते अरे चूहा ले गया इसका दांत, कहां ले गया, है ना। तो हम दांत को तोड़ के गड्ढा खोद के अंदर डाल देते थे, एक अंधविश्वास किए ना हमारा दांत कोई ले न जाए चूहा। तो आपके जीवन में भी इस तरह की बातें हुई होंगी जहां आपको इस तरह से बताया होगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या
1: आप बताते हैं
0: अपने बच्चों को, है ना
1: जी। तो बताइए हमें।
0: हाँ।
1: और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छे टिप्स के बारे में जो कि रसोई को चमकाने में सहायक हो सकते हैं।
0: रसोई को चमकाने में मतलब
1: हमारी रसोई चमकती रहे ना, एकदम बढ़िया रहे, एकदम साफ सुथरी रहे, उसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं।
0: बिल्कुल, कैसे आप अपनी रसोई को साफ सुथरा,
1: तो आप हमें अपने सुझाव भेजिए, आप क्या करते हैं अपनी रसोई को चमकाने के लिए।
0: रसोई को गंदा तो नहीं रखते हैं,
1: हाँ।
0: है ना, आजकल इस पर भी काफी चर्चा हो रही है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट, जो गंदगी या अस्वच्छता का जो माहौल है, उस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप अपने घर की रसोई को कितना साफ सुथरा रखती हैं ये हमें बता सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अब हम क्या कर सकते हैं,
1: एक गीत सुन सकते हैं।

0: बहुत सुंदर गीत हमने सुनवाए हैं अपने श्रोताओं को आरती
1: जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गीत था।
0: हाँ, और संगीत भी कहते हैं कि वैसा ही काम करता है जैसा कि आपके जीवन में,
1: बिल्कुल, खाना हो या दवाई हो क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए आज मैं बात-बात में आपको कह रही होंगी ना, खाने की बात।
0: हाँ, खाना बहुत याद आ रहा है आज और मुझे तुम्हारा पोहा भी याद आ रहा है जिसमें तुम दुनिया भर की अंकुर दालें डाल के खा जाती हो चुपचाप से, और वो राज तुमने आज खुला है हमारी सखियों
1: बना के लाऊंगी आपके लिए।
0: चलिए देखते हैं। तो बात चल रही थी पोषण की, पोषण सप्ताह भी चल रहा है और पोषण पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं अपने जीवन में। अभी हमने कहा कि घर के जो, वैसे तो सभी सदस्यों को अच्छा पोषण लेना चाहिए, लेकिन खास तौर से जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए पोषण कैसा हो, आज विशेष रूप से हम वृद्धावस्था और पोषण पर बातचीत करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल। तो आज जहाँ अनुभवों की एक दौलत होती है ना, वो कौन सी उम्र होती है ना, वो एक जो उम्र हम वहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो अनुभवों की उम्र होती है, उसको वृद्धावस्था कहते हैं। तो कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ रहना हमारी सजगता और सावधानी का परिणाम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शरीर में कई सारे प्राकृतिक परिवर्तन भी आने लगते हैं, जो कि जो आते ही हैं हमेशा। तो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी बदल सकती है और मांसपेशियों की ताकत भी कम हो सकती है, और पाचन और भूख में भी बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस उम्र में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आरती कि संतुलित और जो पौष्टिक आहार है, वो हमारे बुजुर्गों को सक्रिय रहने और शरीर की ताकत बनाए रखने और दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद भी करता है। और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन में क्या शामिल हो। जैसे शरीर की मांसपेशियों और ताकत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो जब गृहिणी भोजन बनाए तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे घर के भोजन में दालें हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, और जो नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए अंडा खाने का भी आपकी आदत हो अंडा खाना, तो आप इसको भी हिस्सा बना सकते हैं। और इसके अलावा फल है, सब्जियां हैं, अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं। रंग बिरंगे फल, सब्जियां, ये जो है भोजन को पौष्टिक बनाते हैं और इनमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर के वृद्ध हो, वो नानुकुर भी करते हैं,
1: बहुत ज्यादा
0: पसंद नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं है, उन्हें समझाना है कि साबुत अनाज और रेशेदार भोजन वृद्धावस्था में आपके पाचन को बेहतर बनाता है, और इसमें जो हड्डियों का आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खास अच्छा हो जाता है। दूध है, दही है, ये खाद्य पदार्थ आहार का हिस्सा बनाए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल। और किसी विशेष, जो कोई विशेष जो पोषक तत्व होता है कि उसकी आवश्यकता जो होती है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी के अंदर किसी की चीज की कमी हो सकती है, किसी के अंदर किसी चीज की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए डॉक्टर या योग्य पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या हम खाएं कि वो उससे, उसके जरिए हमारी जो पोषण आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इसके साथ अक्सर ये भी देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी भूल जाते हैं, और शरीर को तरल पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। इसलिए दिन भर उचित मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्य के जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि जूस हो गया, तरह तरह के फलों के, तो वो लेना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बेहतर बनाकर, कहते हैं कि उम्र को भी आप मात दे सकते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन कहते
1: पता
0: हैं
1: नहीं चलता है।
0: पता ही नहीं चलता है। एक एड भी आया करता था, है ना, इतने साल के बुजुर्ग या जवान। तो मतलब लगता था कि अरे इतने बुजुर्ग आदमी भी जवान की तरह दौड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये आप अपने भोजन पर ध्यान रखकर कर सकते हैं। संतुलित भोजन लें, भोजन बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक नमक है, कई बार ऊपर से नमक डालने की जो हमारी गंदी आदत है ना, उससे हमें बचना चाहिए। बहुत मीठी चाय, चीनी डाल,
1: एकदम कुछ लोग एकदम
0: शरबत पी रहे हैं जैसे, है ना, वो कैसे पीते हैं पता नहीं। और अत्यधिक जो तले भुने खाद्य पदार्थ है, उनका भी सेवन हर बार नहीं करना चाहिए। कभी कभार आपकी इच्छा हो गई, एक अलग बात है।
1: और इसके साथ साथ भोजन को व्यक्ति की चबाने और पाचन की क्षमता के अनुसार ही तैयार करना जरूरी है। जो भी भोजन बना रहा है ना, या आप खुद भी बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप भोजन को बनाएं। जैसे कि दांतों की समस्या होने पर नरम और पौष्टिक भोजन को ही चुनना चाहिए, और भोजन का समय नियमित रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का अनुशासन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल। आप अगर एक समय निश्चित कर लेते हैं तो शरीर उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि किस तरह से शरीर, वो आपको संकेत दे देता है कि भोजन का वक्त हो गया, भोजन कर लेना।
1: बिल्कुल। आपके पेट में गुड़गुड़ होने
0: लग जाती है, और कई बार पता है हम देर कर देते हैं तो फिर कई और दूसरे सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं।

0: लोग कहते हैं ना कि समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी,
1: हाँ, या सिर में दर्द हो जाएगा,
0: सिर में दर्द हो जाएगा। तो समय समय पर आप भोजन लें, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अच्छे भोजन के साथ हल्की शारीरिक जो एक्सरसाइज है, वो गतिविधि है जिसे हम कहते हैं, वो भी आप करते रहें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। टहले, है ना, दिनचर्या का आपकी हिस्सा होना चाहिए टहलना। हाँ, किसी नई व्यायाम योजना को शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
1: बिल्कुल। और वृद्धावस्था कमजोरी का नहीं बल्कि अनुभव, समझ और जीवन की उपलब्धियों का समय होता है। सही पोषण, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी, उचित गतिविधि और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि स्वस्थ भोजन शरीर को शक्ति देता है और अपनों का प्यार जीवन में ऊर्जा भर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो अभी आपने कही ना कि दांतों की जो समस्या उम्र के बाद शुरू हो जाती है, तो जो घर में खाना बनाने वाली है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से अपने घर के बुजुर्ग को वो खाना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने खाना तो रख दिया लेकिन उन्हें चबाने में बहुत टाइम लग जा रहा है। कई बुजुर्ग हमने देखे घंटों खाते हैं उस खाने को, ठंडा हो जाता है खाना, बेस्वाद हो जाता है क्योंकि वो चबा नहीं पाते। तो ऐसे समय में आप ध्यान रखिए, उसको रोटी है तो चूर के दें, चावल है, दाल चावल है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसा दें ताकि जो बुजुर्ग है वो उसे आराम से खा सके।
1: बिल्कुल।
0: थोड़ी सी रोटी अगर बना के रख दिया
1: और गर्म रहेगी रोटी तो कड़ी नहीं होगी,
0: और आपने फटाफट रख दिया कि मैंने तो अपना खाना पूरा दे दिया है, अभी खाएंगे, जब वो खाते खाते खाते खाते घंटों बीत जाते हैं क्योंकि उनके दांत काम नहीं करते।
1: बिल्कुल।
0: तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है जैसे कि प्रोटीन युक्त जो दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं, अंकुरित है, अनाज जो है, अंडा है, आप ले सकते हैं, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, विटामिन और मिनरल्स के लिए आप ये ले, साबुत अनाज जैसा कि रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का दलिया आप खिला सकते हैं। पानी तो आपने भी बताया कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, समय समय पर बुजुर्गों को याद दिलाते रहें। और कैल्शियम और विटामिन डी ये भी जरूरी है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए। और कम नमक की बात आपने बताई, और सबसे बड़ी बात कम चीनी, और हो सकता है तो चीनी छोड़ ही देना एक समय बाद, क्या जरूरत है चाय में चीनी डालने की या बहुत ज्यादा मीठा खाने की, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो शुगर है वो नियंत्रित रहेगी। तो जो बुजुर्ग है थोड़ी थोड़ी मात्रा में आसानी से पचने वाला संतुलित भोजन उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते ना, अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं तो। घर में जो भी गृहिणी है या बाल बच्चे हैं वो ध्यान रखें घर के बुजुर्गों का, और समय समय पर उन्हें गर्म भोजन दें और स्वस्थ भोजन दें।
1: बिल्कुल। और इसी बात को लेकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भेजा भी हमें
0: बताकर।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि वृद्धावस्था में सुपाच्य स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, फल और सब्जी अधिक खाने चाहिए, तले भुने भारी भोजन नहीं करने चाहिए, सूखे मेवे, कद्दू के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में लेने चाहिए।
0: और क्या लिखा है, कुछ और भी लिखा है?
1: हाँ बिल्कुल, लिखा है कि मैंने आज अंकुरित, हाँ उन्होंने अपना खुद का लिखा है कि मैंने आज अंकुरित मूंग और चने को पीस कर उसके चीले बनाए, बहुत बढ़िया। फिर तो ऐसे भी सीनियर्स को अंकुरित अनाज थोड़ा उबाल कर खाना चाहिए, उसमें कुछ भुने हुए सीड्स दो होते हैं और हल्के से चाट मसाला या नींबू का प्रयोग करें। प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ रसेदार जो सिट्रिक जो फल होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको आप उनका सेवन करें। तो इन्होंने इतना अच्छा चीला बनाया भाई,
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हमें प्रयोग करते रहने चाहिए ताकि घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहे और दूसरे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आप बनाएं।
1: बिल्कुल,
0: है ना, चूंकि बात वृद्धावस्था की चल रही है इसलिए उनको खास ध्यान दिया जा रहा है कि वृद्धावस्था में पोषण का कितना बड़ा योगदान है। एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था और पोषण बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। बूढ़ा होने पर भूख और ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए कुछ नया खाने की इच्छा होती है। इस सब्जेक्ट से पहले कविता सुनाना चाहता हूँ। वो यारों की हंसी ठिठोलियां, वहां नेताजी का बुत लग गया, देखो विकास सब चर गया, चौमासे बरसाती नदी वहां बन गया, नदी अब बन गई नाला, नाले भी हो गया गड़बड़ झाला। कुछ कविता लिखने की कोशिश की है और लिखते हैं कि हमारे दादी के घर वहाँ सब्जी रोटी और घी साथ होता है, मतलब कि घी से सनी रोटी हम खाते हैं सब्जी के साथ।
1: अच्छा, ये भी अच्छी चीज है, घी खाना ही चाहिए। सोचने लोग कि ना घी खाने से मोटे हो जाएंगे, नहीं, आप घी खाइए उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं।
0: हाँ, लेकिन घी हरे, वही बात होती है कि आपका शरीर क्या कहता है। अपने शरीर के संकेतों को ध्यान में रखिए कि घी पचता भी है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल, हल्का फुल्का ही खाए, बहुत ज्यादा नहीं
0: हिसाब से। और एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का वो चरण है जब व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बुजुर्गों को परिवार के प्यार, सम्मान, देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। उनका अनुभव और जीवन की सीख समाज के लिए बहुत मूल्यवान होती है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये उम्र ही ऐसी होती है जब व्यक्ति को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि उनके खाने में सभी प्रकार की दालें, चावल, प्रोटीन से युक्त चीजें और कैल्शियम की कमी उनको न होने पाए। इसके लिए दूध वगैरह ये सब जरूर शामिल करें उनके खानों में, और ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी चीज दें जो उनको सूट करती हो। ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इस उम्र में कुछ भी खिला देना बुजुर्गों को सूट नहीं करता है, इसलिए कोई भी ऐसा खाना न दे जो उनके सेहत से खिलवाड़ करे।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ टेस्टी वैरायटी खाना हफ्ते में एक बार ठीक रहता है, और सप्ताह में एक दिन सिर्फ दूध, फल, फ्रूट खाना अच्छा होता है। नमक और चीनी फ्रूट वाले दिन परहेज करनी चाहिए, और मैंने करके देखा है तो लग रहा है कि ये सेहत के लिए ठीक है। सेहत ठीक रहे तो दुनिया अच्छी लगती रहेगी। बचपन के मजे, ये सब बातें इन्होंने लिखी हैं।
0: ये बात तो सही कहा इन्होंने, अगर सेहत ठीक है ना आरती,
1: सब कुछ अच्छा लगता है,
0: सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर सेहत सही नहीं होती ना तो सब कुछ अच्छा हो दे भी सब बेकार लगता है।
1: बिल्कुल। और अभी एक गीत सुने तो और अच्छा लगेगा,
0: हमारी सेहत और अच्छी हो जाएगी।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो ऐसा ही लगता है ये जमी गा रही होती है, आसमान गा रहा होता
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हर जगह संगीत सुनाई देता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और आज हम बात करने जा रहे हैं किनकी, नीदुमोलू सुमति की, जो कि कला क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। तो पद्मश्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इनकी। तो आज हम बात कर रहे हैं नीदुमोलू सुमति की, जिन्हें दंडामुड़ी सुमति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रसिद्ध मृदंगम वादिका और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की वो बहुत बड़ी कलाकार हैं और वो भारत की शुरुआती महिला मृदंगम वादकों में गिनी जाती हैं।
0: क्या बात है।
1: और लय विन्यास की पहली महिला कलाकार के रूप में भी उनका उल्लेख है। और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1950 को आंध्र प्रदेश के एलुरू में।
0: सबसे बड़ी बात। और देखिए ना, मृदंग बजाना, अरे बड़ा मुश्किल काम है। ज्यादातर हमने पुरुषों को ही देखा है, है ना, लेकिन महिलाओं ने भी बहुत जगह अपने जो है कदम रख दिए हैं।
1: बहुत ताकत लगती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर, कैसे मृदंग बजाते
0: हैं, गजब गजब। तो जब नीदुमोलू सुमति को हम सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। और पता चला कि इनके जो माता पिता है, नीदुमोलू राघवैया और नीदुमोलू वेंकट रत्नम्मा इनके माता पिता है। और उनके पिता स्वयं मृदंगम के विद्वान थे। उन्होंने सुमति की संगीत प्रतिभा को बचपन से प्रोत्साहित किया और सुमति ने 6 वर्ष की उम्र में मृदंगम सीखना शुरू कर दिया था।
1: बहुत बढ़िया।
0: उनके पिता उन्हें संगीत कार्यक्रमों में ले जाते थे, जिसे उन्हें मंच और शास्त्रीय संगीत की दुनिया को करीब से समझने का भी मौका मिला।
1: बिल्कुल। और लगभग 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सुमति ने मृदंगम में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पूरा किया। और 1964 के बाद उन्होंने प्रसिद्ध मृदंगम कलाकार दंडामुड़ी राममोहन राव से प्रशिक्षण लिया और राममोहन राव आगे चलकर उनके गुरु के साथ साथ उनके जीवन साथी भी बने। अपने गुरु से उन्होंने मृदंगम की जटिल तकनीकों, लय, ताल और प्रस्तुति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा।
0: बिल्कुल सही कहा। और लगातार जब अभ्यास के कारण वे धीरे धीरे संगत कलाकार से स्वतंत्र और एकल प्रस्तोता के रूप में स्थापित हो गई। नीदुमोलू सुमति की यात्रा जो है केवल एक सफल संगीतकार की कहानी मात्र नहीं है आरती। उन्होंने ऐसे समय में मृदंगम को पेशेवर के रूप में अपनाया जब इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह साबित किया कि कला में सफलता का आधार साधना, समर्पण और योग्यता है।
1: बिल्कुल। उनकी उपलब्धियों ने मृदंगम जैसे पारंपरिक वाद्य के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने और महिला कलाकारों के लिए रास्ते खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मृदंगम पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे वातावरण में भी सुमति ने अपने प्रतिभा और निरंतर साधना से अलग पहचान बनाई। उनके वादन में ताल की सटीकता, लय की जटिलता और प्रस्तुति का संतुलन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने लंबे संगीत जीवन में सुमति ने अनेक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकारों के साथ मृदंगम पर संगत भी की, जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, महान गायिका सुभा लक्ष्मी, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण, जोशी, चिट्टी बाबू, एन रमणी और यू श्रीनिवास जैसे प्रमुख नाम जो है हम शामिल करते हैं। और इससे उन्हें देश के प्रमुख संगीत मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। साथ ही मृदंगम वादन से उनकी प्रतिष्ठा जो है वो भी बहुत ही मजबूत हुई।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, अभी हम लोग का समय हो रहा है एक अंतराल का,
0: और लेते हैं एक अंतराल
1: बात।

0: इस अंतराल के बाद सभी हमारी सखी और सखाओं का स्वागत है। तो बात चल रही थी मृदंगम की।
1: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे सुमति जी की, जो मतलब उनके मृदंग को सुनकर ना ऐसा लगता है कि सारे दिमाग के पूरे शरीर के तार एकदम झनझना उठे।
0: मैं तो पता है उनके बारे में बात करते करते खो भी गई हूँ। मुझे लग रहा है कि उन्हें सामने मृदंग बजाते हुए देख रही हूँ। इतना मतलब गहरा उनका अभ्यास जब देखा और पढ़ा तो लगता है कि कितना कलाकार खुद को मांझता है, तब जाकर वो एक अच्छा
1: एक तपस्या ही तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुमति ने वर्ष 2000 में लय वेदिका नामक संस्था की स्थापना की। उनकी इस संस्था का उद्देश्य मृदंगम और ताल प्रधान संगीत को प्रोत्साहित करना था। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं और संगीत संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस पहल से उनकी भूमिका भारतीय ताल परंपरा के संरक्षण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मार्गदर्शक की बन गई।
0: बिल्कुल। और वर्ष 2015 में सुमति ने सता मृदंगा वाद्य निवाली नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 100 मृदंगम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर उनके गुरु और जीवन साथी दड़ामुड़ी राम मोहन राव को श्रद्धांजलि दी। और ये कार्यक्रम उनके संगीत जीवन की उल्लेखनीय पहलों में गिना जाता है। सुमति को उनकी कला के लिए कई सम्मानजनक उपाधियों से भी संबोधित किया गया है।
1: बिल्कुल, उनकी उपाधियों की बात करें तो मृदंग शिरोमणि, मृदंग महारानी, नाद भागीरथ, मृदंगालय विद्यासागर, मृदंग विन्यास, कला भारती और नादलय साम्रागी जैसी उपाधियां शामिल हैं। निदुमोलु सुमति को उनके लंबे संगीत सफर में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें मद्रास म्यूजिक एकेडमी का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, पालानी सुब्रमणिया पिल्लई मेमोरियल पुरस्कार उनको मिला और बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले।
0: बिल्कुल। और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार का, पालानी सुब्रमणिया पिल्लई मेमोरियल अवार्ड, और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने निदुमोलु सुमति को पद्मश्री से सम्मानित भी किया।
1: वो है भी इतने सारे इन पुरस्कारों के को बहुत ज्यादा उनके मिलने भी चाहिए। इतना उनका जो पूरा व्यक्तित्व है ना, पूरा व्यक्तित्व प्रेरणादायक है।
0: बिल्कुल, ऐसी महान कलाकार को हम सैल्यूट करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: गीत ने जो है झूमने पर मजबूर कर दिया।
1: बहुत प्यारा गीत
0: है ना।
1: और हाँ। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं अपने बचपन की तरफ, थोड़ा सा जाने वाले हैं, है ना। और हमें
0: बचपन की तरफ जाने वाले हैं, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से हम बचपन की तरफ ही थे।
1: सही बात है। और हमारे जो सखी हैं, जो सखाए सब अपने अपने किस्से लिख के भेज रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उनको भी ये अंधविश्वास थे बचपन में।
0: हाँ, हाँ।
1: जो हमें, सिर्फ हमें नहीं थे,
0: उन्हें भी थे। लेकिन ये बात भी पक्की है कि बचपन में हमें नहीं पता होता कि अंधविश्वास है, हमें बताया जाता है, अरे ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा।
1: सच में वो डर रहता है।
0: तो अंकित हो जाते थे इस बाल मन पे, और ये ऐसा नहीं करते। फिर बड़ों के हम भी वही बात आगे कहते रहे। तो ये बचपन में हमें जिस तरह से समझाया गया, डराया गया, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो हम बचपन में समझते थे सचमुच गब्बर सिंह आने वाला है।
1: बिल्कुल, कोई ना कोई आगे पकड़ लेगा अगर हम सोए नहीं
0: तो। सब चीजें हमें बताई जाती थी, कही जाती थी, जिसे हमारे मन में हम अंकित कर लेते थे। बाल मन था हमारा, तो वो अब जब बड़े हो गए हैं तो हमें हंसी आती है कि अरे हम कैसे किया करते थे। तो क्या लिखते हैं श्रोता?
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में ऐसा था कि बहुत भोला बहुत होता है बचपन, किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब हम भाई बहन छोटे थे तो थूजा के पेड़ की पत्तियों को, जिसे हम लोग विद्या का पेड़ भी कहते थे, अपनी किताब में रख लेते थे, क्योंकि उससे विद्या आ जाती है, ऐसा हम लोगों को अंधविश्वास था। और जिस विषय में ज्यादा डर लगता था उसमें खूब सारी पत्तियां रख लेते थे कि अब कितनी विद्या है ये तो पता नहीं, मतलब पत्तियां रख लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे,
0: पढ़ाई नहीं करके भी हम
1: विद्या आ जाएगी हमारे अंदर।
0: हर पेज के अंदर मोर पंख भी हम रखा करते थे बचपन में। सहेलियां देखती थी किसकी किताब में कितने मोर पंख हैं, कॉपियों में कितने मोर

0: पंख है ना, और कई बार पेड़ जो पत्तियां हैं वो भी हम रखा करते थे, कई बार शौकिया भी रखते थे, किसी पेड़ की जो पत्ती हमें पसंद होती थी ना उसका कलेक्शन करके भी हम लोग अपनी नोटबुक में रखा,
1: पीली पड़ जाती थी उसको अच्छा लगता था देखने में,
0: तो ये ऐसा भी होता था। और एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन की वो दुनिया जहाँ न मोबाइल था, न इंटरनेट की चिंता थी, न सोशल मीडिया का दबाव था, बस शरारती थी, खेलकूद, दादी नानी की कहानी और उनके बताए कुछ ऐसे नियम जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए सच मान लेते थे। याद है बचपन में अगर कोई कहता था कि रात में नाखून मत काटो तो हम तुरंत नाखून काटना बंद कर देते थे, कोई पूछता क्यों तो जवाब मिलता बस मत काटो अच्छा नहीं होता। अब हमें ये जानने की फुर्सत ही कहाँ कि अच्छा क्यों नहीं होता, बड़ों ने मना किया है मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है।
1: और एक हमारे श्रोता है लिखते हैं कि फल जो होता है उसका बीज अगर निकल जाओगे तो पेट में पेड़ उग जाएगा,
0: हाँ
1: है ना? ऐसा होता था ना,
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और श्रोता लिखते हैं कि अगर आंख फड़क जाए तो जो है घर में कोई भविष्यवाणी शुरू हो जाती थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं नहीं कुछ खबर आने वाली है, भी दाई आंख फड़की कि बाई आंख फड़की
1: ये जरूर पूछा जाता था कि आंख कौन सी फड़की।
0: हम डर के मारे पता है क्या करते थे, उसके ऊपर कागज काट के छोटा सा आंख को चिपका लेते थे, हमें ऐसा कहा जाता था। और झाड़ू पर पैर मत रखो की बहुत सारी बातें हमें कही जाती थी, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं क्यों, बस हमने उसको सत्य मान लिया।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे समाज जो परिवार में ये प्रथा रही कि किसी बच्चे का दांत टूट जाता था तो हमें ये सिखाया जाता था कि दांत टूटने पर उस दांत को चांद के सामने ये प्रार्थना करनी होती थी कि हे चांद बाबा मैं तुझे पुराना दांत दूं और तू मुझे नया दांत दे, इस तरह से कहना होता था। और ऐसा विश्वास था कि दांत चांद बाबा कुछ दिनों बाद हमें नया दांत भी दे देते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें प्रेरित करते कहते थे कि आप हमारा ये दांत ले लीजिए और हमें दूसरा
0: दांत दे दीजिए। तो मुझे अपना भी याद है आरती, जब मेरा दांत टूटा था मैं सूरज देवता के सामने खड़े होके कहती सूरज देवता मेरा ये दांत टूट गया है मुझे नया दांत दे दो ना, तो ये क्योंकि कहा गया होगा ऐसा। और मुझे वो सीन अब याद हो आया कि मैंने भी बचपन में ये किया है ना, अब समझ आता है कि हम कितने भोले हुआ करते थे, जैसा कहा जाता था हम मान लिया करते थे।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका निदान था कि अपनी उंगलियों से हवा में क्रॉस बनाओ या स्वास्तिक एक बना दीजिए आप,
0: अच्छा।
1: तो उससे मतलब उसका प्रभाव हट जाता है, तो ये बिल्ली वाला तो आज भी चल रहा है अंधविश्वास
0: कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है
1: कितना भी जरूरी काम क्यों ना हम वहीं रुके रहते हैं,
0: बिल्कुल
1: खेलते नहीं।
0: कैसा दिमाग में अंकित हो गई है कुछ चीजें, उनके तर्क कुतर्क अगर हम करने लगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम झाड़ू को देखकर ऐसे निकलते थे जैसे घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो, इसके अलावा बचपन में उल्लू, छिपकली, छींक, रास्ते में कोई चीज मिलना, इन सब के भी अपने अपने मतलब बताए जाते थे। और अगर घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो हम रुक जाया करते थे, ये तो होता था,
1: ये तो आज भी होता है,
0: तुम्हारा छींको, दूसरी छींक, अरे दो छींक आई अब निकलो, है ना, कितना
1: बहुत सारी चीजें।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये बात पता नहीं किसने फैलाई थी कि पेंसिल के छिलके दूध में भिगोकर रखने पर उससे इरेजर बन जाता है, मतलब रबड़ बन जाती है, तो हम बच्चे पेंसिल के छिलके दूध में भिगोकर रख देते थे, हालांकि कभी भी उससे इरेजर नहीं बना, ये चीज तो मैंने भी करी हुई है, कुछ नहीं बनता उससे, सिर्फ डांट पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं।
0: लेकिन ये देखिए बचपन के वो दिन हम याद कर रहे हैं जिन्हें हम कई बार भूल भी जाते हैं, और आज उस टॉपिक के माध्यम से वो दिन याद आने लगे हैं। और लिखते हैं कि एक श्रोता कि सच तो ये है कि इन बातों में से बहुत सी बातें हमें बचपन में सच लगती थी, आज हम बड़े हो गए हैं, तर्क और विज्ञान को समझने लगे हैं, हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन पुरानी बातों की याद आते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है, हमें तो हंसी आ रही है,
1: बिल्कुल
0: मुस्कान तो क्या कहें, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थे, दादी नानी की सख्त हिदायतें थी, माँ की डांट और हमारी मासूमियत थी।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था उस समय से मुझे इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके मैच देखने का बहुत दीवानापन था, तो मुझे अंधविश्वास था कि अगर टेलीविजन पर मैं लाइव मैच देखूंगा तो इंडिया की जो टीम है वो हार जाएगी, इसे टीवी बंद करके मैं रेडियो कमेंट्री सुना करता था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा किया। और ऐसा मेरे साथ कई बार सच में हुआ भी था, बाद में अगर उस समय मैच के मुख्य अंश दिखाए जाते थे तो टेलीविजन पर देख लेता था, अब क्रिकेट मैच में मैं इंजॉयमेंट के लिए लाइव देखता हूँ, पर अंधविश्वास नहीं है, जो मैच जीते वो ही सिकंदर।
0: सही कहा आपने कि इतना हमें पैशन रहता था कि टीम में कब क्या हो रहा है हम लोग इतनी शक्ति लगा देते थे उस मैच को देखने में कि हाँ। अगर उस दौरान कोई उठ गया तो हम कहते तो उठा क्यों, वो बॉल चली गई है ना, वो आउट हो गया प्लेयर हमारा। हाँ या, तो इस तरह की कई बातें हमें याद आती है। और मुझे एक चीज और याद आती है आरती, हमारी सहेलियां

0: कहती थी कि जो गिलहरी है ना इसकी पूंछ पर पत्थर मारो वो 25 पैसे देती है।
1: अच्छा। ये तो मैंने पहली बार
0: हमें याद है हमारे दीवारों पे छत की मुंडेर पर गिलहरी आती थी, हम पत्थर इकट्ठे कंकर करके उसको मारते थे। अब वो कंकर ना उसके वहां लगता ही नहीं था पूंछ पे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होती थी।
1: गिलहरी आपके पकड़ में कभी नहीं आती।
0: हमें लगता काश ये 25 पैसे दे दे हमको, काश ये 25 पैसे दे दे हमको।
1: और एक हमारे भाई साथी है वो भी लिखते हैं कि बचपन में एक और अंधविश्वास था, जैसे ही तारा टूटा दिखाई दिया तो या 5 फल का नाम ले लो या 5 उंगली मुंह में डाल लो, और हम ये करते भी थे। बहुत बढ़िया,
0: सुंदर। तो और कुछ है बताइए। हाँ, श्रोता ने
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखती है कि कोई तारीफ कर इसमें बड़े होने के बाद भी कुछ कितने ही अंधविश्वास में जीते हैं, जैसे बाहर निकलने पर बिल्ली का रास्ता काटना, कोई तारीफ कर दे तो नजर लगने का डर होना। हम लोग जब स्कूल में थे तब हम लोग एक मैना देख लेते थे तो लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, और जैसे ही 2 मैना दिख जाती थी तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो अब इन बातों पर भरोसा नहीं करती, पर मेरी सहेली जो कि मतलब जॉब करती है तो अभी भी इस बात को मानती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले तभी उसे एक मैना दिखाई दी तो बहुत मायूस हो गई कि वो कहने लगी कि इसलिए मैं अपने मोबाइल में 2 मैना की तस्वीर रखती हूँ। हम सारी सहेलियां उसकी इस बात पर बहुत हंसे, और मेरी मम्मी का कहना है कि कभी भी मुझे एक आंख मत दिखाया करो, और वो दिन भर एक आंख दिखाने में गुस्सा हो जाती।
0: बिल्कुल सही कहा, जब हम किसी एक पक्षी को देखते हैं तो कहते हैं 1 सौरो, और 2 जोड़ा दिखता है तो हम कहते हैं 2 जॉय।
1: हाँ।
0: तो ये इस तरह की हमने धारणाएं बना ली हैं कि जोड़ा दिखेगा तो अच्छा कुछ होगा, अकेला कोई दिखेगा तो बुरा। हाँ। कुछ होगा। ये इस तरह की धारणाएं आज भी हमारे साथ चल रही हैं और गाहे बेगाहे हम उससे प्रभावित होते भी।
1: बिल्कुल। और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मैसेज भेजे हैं, कमेंट भेजे हैं, लेकिन इतना हम गीत नहीं सुनेंगे तो फिर संगीत की कमी हो जाएगी थोड़ी।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, प्यार तो हम अपने आप से भी करते हैं, अपने परिवार वालों से,
1: और हम एक दूसरे से भी करते हैं, और अपने सखियों अपने सखाओं से भी करते हैं,
0: बिल्कुल करते हैं, और अपनी रसोई से भी करते हैं, जहाँ हमें सुस्वादु भोजन बनाना पड़ता है,
1: स्वास्थ्यपूर्ण
0: भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है हमारी सखियों ने कि कैसे रखती है वो अपनी रसोई को साफ सुथरा।
1: एक हमारी जो सखी है वो कहते हैं कि रसोई को चमकती और साफ रखने के लिए रोज खाना बनाने के बाद गैस और काउंटर को साफ कर लीजिए अच्छे तरीके से। बर्तन को तुरंत धोकर व्यवस्थित करके रखें। फर्श पर गिरे पानी या खाने को तुरंत साफ करें। सप्ताह में एक बार अलमारियों और फ्रिज की सफाई करें। सूखे और साफ कपड़ों से सतहों को पोंछें। कूड़ेदान को रोज खाली करें। इस तरह थोड़ी सी नियमित सफाई करने से रसोई जो है वो हमेशा साफ और चमकती रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी लिखती है कि रसोई को हमेशा चमकता और व्यवस्थित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि नियमित रूप से छोटे छोटे उपाय अपनाएं। किचन सिंक की सफाई, सिंक को साफ करने के लिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बर्तन धोने का जेल और विनेगर मिलाकर घोल बनाएं। इस मिश्रण से सिंक और स्टील के नलों पर लगे हार्ड वाटर के जो दाग हैं आसानी से हट जाते हैं और बदबू भी नहीं आती है। काउंटर टॉप और स्लैब की देखभाल मैजिक ब्रिक्स की किचन टिप क्लीनिंग जो गाइड है उनके अनुसार करें। बाबरे, बहुत ही इन्होंने तो टेक्निकली लिख दिया है। काउंटर टॉप की सामग्री के आधार पर सुरक्षित सफाई करें। घोल चुने, गर्म पानी, हल्के साबुन के घोल से जिद्दी दागों को तुरंत पोंछे ताकि चिकनाई न जमे। फर्श पर तेल या दूध गिरने से फर्श या उसको साफ भी रखें। सूखा आटा छिड़क कर भी साफ रख सकते हैं। आटा सारा तेल सोख लेता है जिससे 5 मिनट बाद अखबार या कपड़े से पोंछने पर चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है। तांबे के बर्तनों को चमकाना है तो पुराने और काले पड़ चुके तांबे और पीतल के बर्तनों के बेस को साफ करने के लिए टोमेटो केचप का इस्तेमाल करें। केचप लगाकर कपड़े से रगड़ने पर बर्तन तुरंत चमक उठते हैं और किचन का हर कोना जिद्दी और गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी जो लिखती हैं कि रसोई में सभी दाल चावल मसाले जो भी हैं या तो उनको ट्रांसपेरेंट जो ऐसे दिखते हैं जो ऐसे डिब्बों में रखें और उन पर नाम लिख देने चाहिए ताकि कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। हर बार भोजन बनाने के बाद आसपास गिरे सभी गंदगी को साफ कर देना चाहिए। मसालों और दाल आटे के डिब्बे को भी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत साफ करते रहने से रसोई साफ रह सकती है। एक ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा वहां पे फैन लगा होना चाहिए जिससे कि रसोई में दम घुटन सी ना हो और धूप आने से ऐसी कोई खिड़की भी होनी चाहिए और हवा के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो धूप आने से रसोई का वातावरण शुद्ध रहता है। कुछ सफाई हफ्ते में और महीने भर में एक बार करनी ही चाहिए। जो शुद्ध रसोई में भोजन शरीर जो करते हैं बनाते हैं तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक लिखते हैं कि बारिश के मौसम में रसोई में नमी, सीलन और चिकनाई जल्दी होती है। कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे साफ सुथरा और चमकदार रखा जा सकता है। बहुत सारे इन्होंने उपाय लिखे हैं और इसके अलावा लिखते हैं कि किचन साफ सुथरा होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी कुछ सब्जियां काटें उनके छिलकों को अच्छी तरह से समेटें, फेंके नहीं। कभी कभी छिलके जमीन पर पड़े रहते हैं और उनसे पैर फिसलने का डर भी बना रहता है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं तो कोई आएगा अचानक पैर फिसलेगा सड़क पर, कहीं भी आप धड़ाम से गिर जाएंगे।
1: बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कुछ चीजों को ध्यान रखें तो, क्योंकि रसोई ऐसी जगह है ना कि अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो जो खाना पड़ा रहेगा अगर वहाँ पे तो चूहे या इस तरीके की चीजें
0: कॉकरोच
1: आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, कीट पतंगे जो है वो घर में होते ही हैं और इनका ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम सामान रखें और इतना सामान रखें जितनी रसोई में जरूरत हो।
1: खाली डिब्बे जमा मत करिए।
0: बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं शौकिया और किचन में और सिंक में दुनिया भर के बर्तन लगा देती हैं गृहिणियां दिन भर की, शाम को साफ कर लेंगे या बाई आएगी तो अगले दिन मांज लेगी। वो जो ढेर होता है बर्तनों का वो घर में एक अलग सी स्थिति पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में खाना बनाना भी जो है अच्छा नहीं लगता
1: और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहता है।
0: बिल्कुल, स्वास्थ्य से तो हम खिलवाड़ करते ही है और बहुत कुछ चीजें जो है हमारी घर की गृहिणी पर निर्भर करती है कि वो अपनी रसोई को किस तरह से साफ सुथरा
1: रखिए। और जो फालतू के सामान उनको जमा मत करिए। और इस समय एक छोटा सा गीत सुनते हैं।

0: आरती, बहुत सुंदर गीत था ये, और मुझे लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा नाम गुलमोहर रख दूं। और पता है गुलमोहर का अर्थ क्या होता है? गुल यानी फूल, मोहर मतलब चमक, जो सुंदर है, जो शोभित है। यानी गुलमोहर जो एक सुंदर पेड़ का नाम भी है जिस पर चमकीले लाल नारंगी फूल खिलते हैं, और इसलिए ये नाम खुश सुंदरता खुशहाली रंगों और प्रकृति की शोभा का हम प्रतीक मानते हैं। और तुम अभी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, खिलाती भी सुंदर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको ये।
0: तो चलिए अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम से आज मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: తెలుగు కార్యక్రమాలు వినాలని ఉందా? మన తెలుగు కార్యక్రమాలు కూడా న్యూస్ ఆన్ ఏఐఆర్ యాప్ లో లభ్యమవుతుంది.
1: ആകാശവാണിയുടെ എല്ലാ മലയാളം ചാനലുകളും ന്യൂസ് ഓൺ എയർ ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ആകാശവാണി എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം.
2: സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി.
3: ന്യൂസ് ഓൺ എയർ പ്രോഗ്രാം বাংলা ഭാഷയ এখন ভালো ভালো সংগীত খবর আর অনেক রকম ভালো প্রোগ্রাম শুনে যাচ্ছে, আমিও শুনছি আর আপনারাও এর সাথে যোগদান করুন.